हर हालत में शीतलता बांटने का ही कार्य किया है। हमें चाहे कितने ही नफरत फैलाने वाले क्यों न मिल जाएं, हमने अंगार नहीं बन जाना, हमने जलती हुई आग को थामने के लिए पानी का बरसात का रूप बनना है। हमने उस अवस्था को बनाए रखना है।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला।

सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी रेडियो सखी किरणी एक बार फिर हाजिर हूँ रेट्रो हिट्स के एक और एपिसोड के साथ। बिना तेरे जिंदगी से शिकायत क्यों करूं भला, बिना तेरे जिंदगी से शिकायत क्यों करूं भला, गिला तब करूं जब तुम साथ होके भी पास नहीं हो।

जान तुम पर निसार करती हूँ, जान तुम पर निसार करती हूँ, मैं नहीं जानती दुआ क्या होती है।

हजारों ख्वाहिशें ऐसी जिन पर दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी जिन पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले।

रफ्तार जिंदगी की कुछ यूं बनाए रख, रफ्तार जिंदगी की कुछ यूं बनाए रख कि दुश्मन भले ही आगे निकले, दोस्त कोई ना पीछे छूटे।

मुस्कान बनाए रखो, सब साथ हैं गालिब। मुस्कान बनाए रखो, सब साथ हैं गालिब, वरना आंसुओं को आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। वरना आंसुओं को आंखों में भी पनाह नहीं मिलती।

तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझको ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं हम। तुझको बेहतर बनाने की कोशिश में तुझको वक्त नहीं दे पा रहे हैं हम। माफ करना ए जिंदगी, तुझको ही नहीं जी पा रहे हैं।

कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआओं की तरह होते हैं जो किस्मत से मिलते हैं।

मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी खरीद के देखे। मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी खरीद के देखे, लेकिन जिंदगी फिर नहीं मुस्कुराई बचपन की तरह। इसी के साथ ही आपसे इजाजत चाहती हूँ। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। जय हिंद।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का

0: आया पढ़ने न पाए उसने कसाया देखो बजाना।
1: अरे वाह वाह मेरे शागिर्द,
0: थैंक यू दुनिया।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, हम सफर जिंदगी का।
5: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
6: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आपने चुन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपुई। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार, लेकिन एक असली कलाकार वही है जो अपनी कला से समाज को आईना दिखाए और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छू ले। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी थिएटर की दुनिया में कदम रख रहे हों, यानी हमारे नवोदित कलाकार, या फिर आप बरसों से मंच से जुड़े हों, आप सभी के हुनर को निखारने और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज से हम ला रहे हैं अनमोल वचन, एक बेहद खास शख्सियत की आवाज में। जी हाँ, आज से हम फाइव एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप के संचालक और रंग मंच की दुनिया के जाने माने रंगकर्मी श्री मानव मेहरा जी आपके मार्गदर्शन हेतु इस श्रृंखला में रहेंगे। ये वेद थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अम्बाला की ओर से रंगमंच और रंगकर्मियों के मार्गदर्शन के लिए एक कोशिश और एक पहल। मानव मेहरा जी, आज से हमारे सभी उभरते हुए और अनुभवी कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाएंगे इस रेडियो श्रृंखला में और बताएंगे कि एक सफल मंच कलाकार बनने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है। कार्यक्रम रंगमंच की ओर में तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कला और कलाकार का ये खूबसूरत सफर सिर्फ रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz पर।

जाने मन क्या किसी इंसान की खामोशी में पूरी एक सदी का दर्द सुना जा सकता है? क्या किसी की आंखों का खालीपन इतना भारी हो सकता है कि देखने वालों की रूह कांप जाए? नमस्कार, मैं मानव मेहरा, द एक्टर्स आई के एपिसोड 6 में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। एक्टिंग के सफर में आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं जहां व्याकरण यानी कि ग्रामर खत्म हो जाता है और सिर्फ जज्बात बसते हैं। आज की मास्टर क्लास सिनेमा के इतिहास की उस मल्लिका के नाम है जिन्हें दुनिया ट्रेजेडी क्वीन कहती है, लेकिन जो असल में अभिनय की देवी थी, मीना कुमारी जी। और आज हम उनके जिस किरदार को समझने का प्रयास करेंगे वो है 1962 की कालजयी फिल्म साहिब, बीबी और गुलाम की छोटी बहू। एक एक्टिंग स्टूडेंट के तौर पर जब आप छोटी बहू को स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? एक अमीर जमींदारनी, एक शराबी औरत या एक मजबूर पत्नी? नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो वो एक सोने के पिंजरे में तड़पती हुई एक खूबसूरत मौत है। आइए मीना जी के अभिनय की उन परतों को यानी कि लेयर्स को खोलते हैं जो इस परफॉर्मेंस को एक टेक्स्ट बुक बना देती है। पहली मास्टर क्लास, नशे की एक्टिंग। इसे एक्टिंग की दुनिया में सबसे मुश्किल क्राफ्ट माना जाता है। अक्सर नए एक्टर्स नशे को लाउड कर देते हैं, वो बेवजह लड़खड़ाते हैं, जोर से हंसते हैं, शब्दों को चबाते हैं, लेकिन मीना जी की एक्टिंग को डिकोड कीजिए। छोटी बहू मदिरा यानी कि शराब शौक से नहीं पी रही, वो उसे जहर की तरह पी रही है, सिर्फ इसलिए ताकि उसका पति उस रात कोठे पर ना जा पाए। यहां मंशा फिजिकल नहीं, इमोशनल है। मीना जी की आंखों की पुतलियों को ध्यान से देखिए। शराब पीने के बाद उनकी पलकें भारी हो जाती, लेकिन वो जानबूझकर अपनी आंखें चौड़ी करके खोलने की कोशिश करती है। वो अपने शरीर के ढीलेपन को अपनी इच्छा शक्ति से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। असली नशे की एक्टिंग यही है। अ ड्रंकन पर्सन ऑलवेज ट्राइज टू एक्ट सोबर, यानी कि एक नशे में धुत इंसान हमेशा होश में दिखने की कोशिश करता है। नहीं, वो अपने साड़ी का पल्लू बार बार संभालती है, ये जताने के लिए कि उनका खुद पर काबू है। ये जो कंट्रोल खोने और उसे वापस पाने की जद्दोजहद है, यही यही महान अभिनय है। दूसरी बारी की, जिसे हम कहते हैं प्रॉप और कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल। एक सीन है जहां छोटी बहू पूरे 16 श्रृंगार में बैठी है, भारी बनारसी साड़ी, मांग में चौड़ा सिंदूर, गले में भारी हार, लेकिन मीना जी के चलने और बैठने के अंदाज को ऑब्जर्व कीजिए। वो उन गहनों को अपनी ताकत की तरह नहीं पहनती है, वो उन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों की तरह पहनती है। जब वो अपना भारी हार छूती हैं, तो उनके हाथ में एक अजीब सी थकावट होती है। उनका हर जेवर बस खाली हवेली में उनकी घुटन को बढ़ा रहा है। एक एक्टर को यह सीखना चाहिए कि आपका कॉस्ट्यूम सिर्फ पहनने के लिए नहीं होता है, वो आपके किरदार की साइकोलॉजी का हिस्सा होता है। क्या आपके कपड़े आपको आजादी दे रहे हैं या आपको कैद कर रहे हैं? अब ध्यान देते हैं तीसरी लेकिन सबसे अहम बात पर, और वो है वॉइस मॉड्यूलेशन, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं आवाज का उतार चढ़ाव। मीना जी की आवाज में कुदरती तौर पर एक ट्रेजेडी थी, लेकिन छोटी बहू के किरदार में उन्होंने अपनी आवाज को गले से नहीं बल्कि अपने सीने से यानी कि चेस्ट रेजोनेंस
अपनी नाभि से निकाला है। जब वो भूतनाथ से पूछती हैं, क्या मैं सुंदर नहीं हूं भूतनाथ, इस डायलॉग में जो क्रैक है, जो गले का रुंधना है, वो तकनीकी नहीं, वो सेंस मेमोरी है। शब्द बहुत धीरे से बोले गए हैं, फुसफुसाहट की तरह, जैसे कोई अपने ही अंदर किसी से बात कर रहा। एक एक्टर को ये कला आनी चाहिए कि जब दर्द बहुत गहरा हो तो आवाज का वॉल्यूम नहीं बढ़ता, आवाज की गहराई बढ़ती है। और अब वो सीन जो एक्टिंग की दुनिया का माउंट एवरेस्ट है, वो गाना याद है ना, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया। इस गाने में मीना जी की बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखिए। एक जमींदारनी, एक खानदानी औरत जमीन पर बैठी अपने अपने पति के पैरों को कस कर पकड़ा हुआ है उसने, वो गिड़गड़ा रही है। लेकिन ध्यान से देखिए, उस गिड़गड़ाने में, इस जमीन पर गिरने में भी एक ग्रेस है। उन्होंने अपनी डिग्निटी खो दी है, लेकिन अपनी शराफत नहीं खोई। वो जोर से रोकर तमाशा नहीं कर रहे, उनके आंसू उनकी बेबसी है, उनकी शिकायत नहीं। एक ही फ्रेम में एक औरत का सबसे ऊंचा गुरू और उसकी सबसे गहरी कमजोरी, दोनों को एक साथ पर्दे पर जीना, ये सिर्फ मीना कुमारी ही कर सकती थी। तो भाई लोग, मीना कुमारी जी ने हमें सिखाया कि महान अभिनय दिमाग से नहीं होता है, वो आपकी आत्मा के उन कोनों से होता है जिन्हें आप दुनिया से छुपा कर रखते हैं। और अब भाई लोग, आज की मास्टर क्लास का होमवर्क, और यकीन मानिए ये आज तक का सबसे मुश्किल होमवर्क होने वाला है। हम इसे कहेंगे द सोबर ड्रंक मोनोलॉग, यानी कि होश में नशे का एकालाप। अपना कैमरा ऑन कीजिए, आपको कोई एक साधारण सा पैराग्राफ पढ़ना है। मान लीजिए आप किसी को अपनी दिनचर्या बता रहे हैं, या रोज आप क्या करते हैं, ये सब बता रहे हैं, लेकिन सबटेक्स्ट ये है कि आपने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है और आप सामने वाले से ये छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप नशे में हैं। आपको लड़खड़ाना नहीं है, जबान नहीं लड़खड़ाने देनी, सिर्फ अपनी आंखों से, अपनी पलकों के भारीपन से और अपने शब्दों को हद से ज्यादा साफ बोलने की उस एक्स्ट्रा कोशिश से ये जताना है कि आपके अंदर कितना नशा है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैमरे पर पकड़ने की कोशिश कीजिए, इसे रिकॉर्ड कीजिए और मुझे कमेंट्स में आकर जरूर बताइएगा कि क्या आप अपनी ही आंखों को धोखा दे पाए। आज के लिए बस इतना ही, हमसे जुड़े रहें और अपनी कला की इबादत करते रहें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और आइकॉनिक फिल्म के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नहीं,

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: तो शुभ बोजन FM 90.0 रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजन रूजियो पनिन पसंदीद बात।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। ललेश्वरी, जिन्हें ललदेत या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत, कवियत्री और शैव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शैव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवा की ये श्रृंखला।
6: नमस्कार, आज का जो ललवाक है वो माता ललेश्वरी शिवयोगिनी का बड़ा ही महत्वपूर्ण वाक है। ये ललवाक पहले मैं आपको कश्मीरी में सुनाता हूँ। मकरिस मलजन सोलुम मनस, मकरिस मलजन सोलुम मनस अदलबम जनिस जान, सुयल ड्यूठुम निष्पानस सोरई सुतई बनोक्य। यानी हमारा मन हमेशा शुद्ध नहीं होता, और ये शुद्धता इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें इच्छाएं, इसमें आकांक्षाएं, इसमें अपेक्षाएं, इसमें वासनाएं भरी पड़ी होती हैं, और इन इनके कारण से हमेशा मेरा मन अशांत रहता है, और ये अशांत विचार इस मन को ढक के रख देते हैं। यही मल कहलाता है, और यही मल हमारे असली स्वरूप को हमसे छिपा के रखता है। जैसे जैसे हम मन का थोड़ा सा भी मल दुलाना शुरू कर देते हैं, यानी उस अवेयरनेस के प्रति हम जागरूक होना शुरू हो जाते हैं, तो भीतर से आत्मा का जो प्रकाश है वो झलकने लगता है, और निरंतर साधना और ईश्वर की कृपा से ये शुद्धि बढ़ती जाती है। यानी ऐसा नहीं कि एक बार, ये निरंतर प्रयास करते रहना है, और धीरे धीरे आत्मज्ञान जागृत होने लगता है, और जैसे जैसे आत्मज्ञान जागृत होने लगता है वो जो अहंकार है, जो मैं है, वो मैं मिटना शुरू हो जाता है। तब हमें अनुभव होता है कि जो मैं वाला मैं हूं वो कुछ भी नहीं, और जो वो वाला मैं है अहम, वो जो शिव का अहम है, वही सब कुछ है। यही शिव को जानने की एक प्रक्रिया है। आइए मैं नीरजा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी सरस्वती के मुखमंडल से इस ललवाक को हमारे सामने प्रस्तुत करें।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: 90.0 FM पर सामाईन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

दोस्तों, फिल्मी गीतों पर आधारित इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहेंगे। मैं हूं इस कार्यक्रम में आपका दोस्त रमेश मराठा। नमस्ते, वेलकम।

उस रोज तुम्हारी पहली बारिश में तुम्हारा पहली बार मेरे साथ भीगना धनक की तरह तुम्हारी चूड़ियां मौसमी खनक लिए अब की बारिश को सतरंगी लिबास पहना कर जमीन के इस टुकड़े को जन्नत में तब्दील कर देता है। मुझे तुम्हारी आंखों से काजल चुराने की फुर्सत कहां है मुझे तुम्हारी नींदों में शामिल होने की, क्योंकि बरसों से इसी इंतजार में हूं कि पहले ही की तरह बरसात हो और तुम्हारे नंगे पैरों को छूने की मेरी मुराद

लटकती हैं तस्वीरें, इस भीड़ में गुम हो जाते हैं चेहरे, वो चेहरे जिनकी एक झलक पाने के लिए मन हमेशा बेताब रहता है। और कई बार एक सवाल मन में हमेशा पैदा होता है कि यह गुमनाम चेहरे क्यों जन्म लेते हैं आखिर, अगर इनको मिलने की इजाजत नहीं होती। जरा सोचिए, अगर सारी जिंदगी यूं ही गुजर जाए इन चेहरों की तलाश में, तो जीवन मृत्यु का ये ताना बाना कभी खत्म नहीं होगा, और ये चेहरे हमें रिझाने में नजर आएंगे, ओझल हो जाएंगे।

0: मेरी जन्नती बेनजीर, आसमां से उतर आई हो मुझे छूने के लिए। वो भी एक दौर था जब तुम मेरे अतीत के हर लम्हे में शामिल थे, मेरी धड़कनों की तरह। और एक यह भी दौर है जब अब तुम फना हो गए हो, गुम हो गए हो, चले गए हो उस पार, जहां मेहंदी भरे पांव में नाचते हो इतना कि तुम्हारे पैरों की धड़कन मेरे वजूद को ख्वाबों का लिबास पहनाती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद तेरे मेरे सपने जरूर सच होंगे।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

बस्ती बस्ती और तलाशते हैं अपनी खोई हुई पहचान को। बेपरवाह होकर रात भी मेहरबान होती जरूर, गर कोई अपना आवाज देता, मुझे पुकारता, मेरी सोहबत में रहकर मुझे जानने की कोशिश करता, मेरे हम कदम मेरे साथ साथ अगले लम्हे तक मेरी उंगली पकड़कर मुझे उन गलियों में छोड़ देता जो मेरे आने के इंतजार में कब से आंखें बिछाए हुए हैं।

जिंदगी का सफर है तवील और ये रास्ते हैं दुश्वार। यहां हर कोई अकेला है, तन्हा है, जीने के लिए दीवाना है। हम सब तलाशते हैं सुकून के कुछ पल और बेताब रहते हैं खुशी पाने के लिए। शायद यह भी अपनी जगह सही है कि हम सबकी मुस्कुराहटें आज बनावटें हैं और हालात के साथ समझौता करते हैं। क्या इसी तरह के हालात बादलों के उस पार भी होंगे जहां शायद अनदेखी बस्तियां हैं और भीड़ भरे बाजार, अलग तरह की रौनकें जो जिंदगी के सफर को सुहाना बनाने में मदद

आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। आज का यह सफर बस यहीं तक, चाहेंगे आपसे इजाजत। इजाजत, नमस्ते।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 7। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है दोस्ती और रिश्ता। प्रस्तुत करेंगे आरजे किरनी। रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने। कार्यक्रम लिखा और निर्देशित किया आरजे किरनी ने।
3: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का रेट्रो हिट्स है दोस्ती और रिश्ते स्पेशल। दोस्तों और अपनों के रिश्ते ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। आज हम उन्हीं रिश्ते के अनमोल जज्बात को महसूस करेंगे। जब दोस्ती का रिश्ता मजबूत होता है तो फासले और वक्त सब बेकार होता है।

दोस्ती में होती है ईमानदारी, इसमें दुनियादारी नहीं होती। दोस्ती एक राज है जो खुलता नहीं, ये वो दीपक है जो बुझता नहीं।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 7। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था दोस्ती और रिश्ता। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने। इस कार्यक्रम को लिखा, प्रस्तुत किया और निर्देशन दिया आरजे किरने ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधता गीतमाला एपिसोड 15। आज का कार्यक्रम आधारित है उत्तराखंड से डॉक्टर राजेश कुमार जैन के गजल संग्रह दर्द बोलता है पर। सहयोग आरजे किरणी, रिकॉर्ड एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता भारत सोपोरी।
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, लेके आया हूं विविधता गीतमाला कार्यक्रम का एक और एपिसोड। इस कार्यक्रम में जो हम गजलों और कविताओं का चयन करते हैं वो निर्भर होता है हमारी माला और देश के लेखकों के कविता संग्रहों पर या गजल संग्रहों पर। हमें बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम को पूरे देश में सुना जाता है और अलग अलग जगह से जो लेखक है, इतिहासकार है, वो हमें अपने गजल संग्रह और अन्य पुस्तकें भेजते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसका अध्ययन करने के बाद एक कार्यक्रम बनाया जाए। हमारी कोशिश रहती है कि जो गजलें बहुत अच्छी हों, जो नज़में बहुत अच्छी हों, उनको पढ़कर हम सभी श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और साथ में उसके साथ जुड़ा हुआ संगीत भी आपको सुनाते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें जो गजल संग्रह हमने लिया है, जिसकी कविताएं और गजलें आपको सुनाएंगे, उसका शीर्षक है दर्द बोलता है। इसके लेखक है श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से डॉक्टर राजेश कुमार जैन। ये बहुत ही अनुभवी लेखक है और मुझे उम्मीद है आप इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले जो इनके मार्गदर्शक है, इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इनके बारे में लिखते हैं। सीहोर मध्य प्रदेश से धर्मराज देशराज जी, इनके बारे में लिखते हैं कविवर डॉक्टर राजेश कुमार जैन जी की कृति दर्द बोलता है चंद लाजवाब गजलों का गुलदस्ता है, जिसमें हर शब्द अपनी पूरी कशिश के साथ जुड़ा है। डॉक्टर जैन ने गजल की तमाम बंदिशों को गजलों में तहे दिल से निभाया है। लोग इनको भूल जाना चाहेंगे किंतु दिल को छूने वाले शेर यकीनन उनको यादों में बनाए रखने के लिए काफी है। गजल संग्रह दर्द बोलता है मैं अपनी बात में डॉक्टर राजेश कुमार जैन लिखते हैं, मैं बेझिझक ये स्वीकार करता हूं कि मैं उर्दू नहीं जानता, किंतु अपने आसपास बोले जाने वाले शब्दों को अपनी गजलों में लिखने का प्रयास करता हूं। ये भी हकीकत है कि मुझे गजल लिखने की अधिक जानकारी नहीं थी। गजल लेखन में मुझे अनेक विद्वान मित्रों का सतत सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उन्हीं सब के प्रोत्साहित करने पर लेखन को गति मिलती है। प्रस्तुत गजल संग्रह के लेखन और मार्गदर्शन में सर्वाधिक सहयोग मेरे अन्य मित्र और अग्रज आदरणीय धर्मराज देशराज जी सीहोर मध्य प्रदेश का मिला है। मैं उनका हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं और बाकी जिन सभी मित्रों ने मुझे सहयोग दिया उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो श्रोताओं, आइए करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। डॉक्टर राजेश कुमार जैन अपने गजल संग्रह दर्द बोलता है मैं लिखते हैं, आपसे दिल लगाना गजब हो गया, बेसबब आजमाना गजब हो गया, देखने को तुम है हम मरे जा रहे, ख्वाब में भी न आना गजब हो गया, हम अकेले खड़े देखते ही रहे, आपका रूठ जाना गजब हो गया, इश्क है आपसे देख लो तुम सनम, बस यही तो बताना गजब हो गया, हम मनाते रहे हैं सदा आपको, यूं नजरों का छुराना गजब हो गया, जिंदगी जब तराना सुनाने लगी, आंख उनसे मिलाना गजब हो गया, बात ही बात में हो गए तुम खफा, राज उनको मनाना गजब हो गया, राज उनको मनाना गजब हो गया। एक और गजल में डॉक्टर राजेश कुमार जैन लिखते हैं, झूठ का प्यार दिखाने की जरूरत क्या थी, हमसे फिर दिल को लगाने की जरूरत क्या थी, बेवफाई जो तुमको करनी थी जानम, जिंदगी को यूं सजाने की जरूरत क्या थी, राज उल्फत का जब तुमने बतलाया था, यूं सितम ढहाने की फिर जरूरत क्या थी। आप तो प्यार हमसे बेहिसाब करते थे, झूठे तोहमतें लगाने की जरूरत क्या थी, यूं न रूठो अब तो प्यार से देखो मुझको, हाथ मेरा ही छुड़ाने की जरूरत क्या थी। साथ जो छोड़ हमारा तुमको जाना था, संग फिर कदम बढ़ाने की जरूरत क्या थी, बेसबब क्यों यूं सताया तुमने था हमको, राज जुल्म सितम ढाने की जरूरत क्या थी, राज जुल्म सितम ढाने की जरूरत क्या थी।

0: डॉक्टर राजेश कुमार जैन एक और गजल में लिखते हैं, हिंद में हिंदी सदा ही शान हो, हर जुबां पे बस इसी का गान हो, क्यों कभी भी ये कहीं गुमनाम हो, बस यही तो विश्व में अभियान हो, ज्ञान की भी बस यही तो खान हो, विश्व की ये आन हो और शान हो, हिंद की हर बात का सम्मान हो, दे रही ये बस हमें ज्ञान हो, राष्ट्र का करते सभी गुणगान हो, सांस्कृतिक परिवेश का ध्यान हो, देखकर हमको सदा मान हो, हिंद ही बस विश्व का भगवान हो, विश्व की भाषा यही है सोच लो, वेद मंत्रों का सदा ही मान हो, वेद मंत्रों का सदा ही मान हो। डॉक्टर जैन एक और गजल में लिखते हैं, असर हमने दुआओं का देखा, बागी लोगों का बदलता देखा, साथ देता रहा जो बेबस का, झूमता उसको तो सदा देखा, दिल दुखाते हैं जो गरीबों का, हश्र उनका यहाँ बुरा देखा, प्यार में है बहुत बड़ी ताकत, आज हमने भी आजमा देखा, लाख चाहो बुरा नहीं होता, तूफान से कश्ती को निकलते देखा, बात कहना वही जो सच हो, झूठ का महल उजड़ता देखा, जो खुशी छीन ले गया यारो, राज उसको लुटा हुआ देखा, राज उसको लुटा हुआ देखा।
1: तो पे

0: लेते हैं डॉक्टर राजेश कुमार जैन की एक और गजल। वो लिखते हैं, वो समझते हैं बेजुबां है हम, जबकि अपनी ही दास्तां है हम। लोग कहते रहे सभी हमको, चार दिन के ही मेहमान है हम। खूब हमको सभी सुनाते थे, आज तो बस धुआं धुआं है हम। बात अपनी बता रहे तुमसे, पूछ लो आप कहकशां है हम। जिंदगी भर सदा सुनी सबकी, वक्त का एक कारवां है हम। ये जमाना गवाह है सबका, क्या कहें अब कहां कहां है हम। तो डालो लगी सभी बंदिश, राज अपना बता जहां है हम। राज अपना बता जहां है हम। एक और गजल में डॉक्टर जैन लिखते हैं, एक तीर भी निशाने पे लगने नहीं दिया, जज्बात को कभी मेरे मरने नहीं दिया। अपना कभी किसी से रिश्ता बना नहीं, हमने किसी को दुश्मन बनने नहीं दिया। सबने हमारी हसरत का खून था किया, मंजिल मिली मगर कुछ करने नहीं दिया। सोचा बहुत कि कुछ तुमको न पता चले, अशकों ने राज कोई भी छुपने नहीं दिया। दुश्मन सभी हमें मिलकर थे सता रहे, हमने कभी भी खुद को बिखरने नहीं दिया। नेकी की राह पैर बढ़ते चले गए, ईमान को कभी फिसलने नहीं दिया। हम पर न कभी किस्मत मेहरबान हुई, ए राज ये जमीर बिखरने नहीं दिया। ए राज ये जमीर बिखरने नहीं दिया।
1: राज ये मुझ पे

डॉक्टर राजेश कुमार जैन एक गजल में लिखते हैं, प्यार तेरा बस पागल कर दे, जो बिना जख्म के घायल कर दे, आपको देख के यूं दिल ने कहा, आपका दीद भी कायल कर दे, आप जिन राहों से गुजरते हो, उस जमी को भी संदल कर दे, तेरे घुंघरुओं से आती आवाज, छू ले दिल को तो हलचल कर दे, साथ आकर तू साया बन जा, फिर तो जंगल को भी मंगल कर दे, साथ जो चंद कदम तू चले, फिर सवालात सभी हल कर दे, रूट जाए जो कभी तो हमसे, राज जीवन को दलदल कर दे, राज जीवन को दलदल कर दे। एक और प्यार भरी गजल में डॉक्टर राजेश कुमार जैन लिखते हैं, मेरे प्यार को तेरी हिचकियां समझती हैं, तेरे बावफाई ये सिसकियां समझती है, फिर सितम तुम्हारे ये घाटियां समझती है, तेरी याद में तड़पी वादियां समझती है, तेरे बिन यहां हम भी कितना यार तड़पे हैं, बात दिल की देखो मजबूरियां समझती है, प्यार है तुम्ही से कैसे तुम्हें ये बतलाता, आज ये हकीकत तन्हाइयां समझती है, आपसे बिछड़ के क्या हाल है हमारा भी, समझ लो सभी वो बेताबियां समझती है, बेबसी किसी से क्या क्या नहीं है करवाती, बात सब हमारी भी दूरियां समझती है, राज हम तुम्हारी हर बात मान भी लेते, बात ये सभी वो रुसवाइयां समझती है, बात ये सभी वो रुसवाइयां समझती है।

एक और गजल में डॉक्टर जैन लिखते हैं, प्यार में रूठ के जाने की जरूरत क्या थी, हमसे फिर दिल को लगाने की जरूरत क्या थी, बेवफाई तो करी आपने उस पर ही फिर झूठे आंसू यूं बहाने की जरूरत क्या थी, राज उल्फत का छिपाने की तमन्ना रखकर दिल के जज्बात दिखाने की जरूरत क्या थी, आपने प्यार किया जान से बढ़कर हमसे तीर नफरत के चलाने की जरूरत क्या थी, अब न रूठो यूं जरा प्यार से ये बतला दो, हाथ यूं मुझसे छुड़ाने की जरूरत क्या थी, साथ यूं छोड़ हमारा जो चले जाना था, प्यार की पींग बढ़ाने की जरूरत क्या थी, बेसबब छीन तबसुम यूं खिले चेहरे से, राज का दिल यूं दुखाने की जरूरत क्या थी, राज का दिल यूं दुखाने की जरूरत क्या थी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। अब आपके सामने पेश करता हूं डॉक्टर राजेश कुमार जैन की अंतिम दो गजलें। डॉक्टर जैन लिखते हैं, आज फिर दिल को मनाया देर तक, याद में उनको मैं लाया देर तक, आप तन्हा छोड़कर जब चल दिए, हमने खुद को था जलाया देर तक, आप उल्फत मेरी जब ठुकरा गए, वक्त ने था फिर रुलाया देर तक, आपको भी याद क्या आती नहीं, बस यही न पूछ पाया देर तक, लोगों ने बदनाम कांटों को किया, तूने खंजर था चुबाया देर तक, तोड़कर दिल मेरा तुम तो चल दिए, अश्क हमने फिर बहाया देर तक, राज हमसे पूछकर फिर आपने कांटों पर था लिटाया देर तक, कांटों पर था लिटाया देर तक। अपेश है आखिरी गजल, डॉक्टर जैन लिखते हैं, जिसने था जिंदगी भर रुस्वा किया मुझे, फिर साथ छोड़कर यहां तन्हा किया मुझे, मैं ढूंढता रहा पागल की तरह जिससे, बरसात भी उदास थी छोड़ा किया मुझे, अरमान टूटते ही रहे कुछ न कर सका, फिर जिंदगी रही ना अजूबा किया मुझे, कहने को दिल की बात भी सोचा बड़ा मगर, दामन छुड़ा के आपने तन्हा किया मुझे, हालात में गिरा बस बेबस खड़ा रहा, तूफान ने अचानक धोखा किया मुझे, बेखौफ हो मेरे जब आगे बढ़े कदम, उसकी निगाह ने क्यों पराया किया मुझे, या रब खता बता कि उठा ले जहां से, ए राज ये बता क्यों पुकारा किया मुझे, ए राज ये बता क्यों पुकारा किया मुझे।

ये था आज का वितस्ता गीत माला कार्यक्रम एपिसोड 14, जो आधारित था गजल संग्रह दर्द बोलता है पर, जिसको लिखा डॉक्टर राजेश कुमार जैन ने। डॉक्टर राजेश कुमार जैन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रस्तुति पसंद आएगी। आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपना गजल संग्रह हमें भेजा और ये हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट। अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में अपना फीडबैक भेजना चाहते हैं, आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर भेज सकते हैं। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। मिलता हूँ किसी और कार्यक्रम में, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीत माला एपिसोड 15, जो आधारित था गजल संग्रह दर्द बोलता है पर, जिसके लेखक थे उत्तराखंड से डॉक्टर राजेश कुमार जैन। सहयोग दिया आरजे किरणी ने। रिकॉर्ड एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया भरत सोपोरी ने। ये थी FM 90।
1: नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो वितस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो वितस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो वितस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो वितस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुक्रिया।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है, आंखों ही

0: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।
1: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हमसफर जिंदगी का।

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली,

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जोली जोली, जोनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: ये तो कौन मांगता
1: जानी जानी चुली का दिल तुम पे आया जानी तुझको ही माना मैंने अपना हानी तू ही तो मेरी जान है

0: मेरे नहीं मांगता, हमको लेले नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
5: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, लेके आए हैं हम आपका मनपसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो आप हर शुक्रवार को दिन के 2 बजे सुनते हैं और इसका पुनः प्रसारण अगले बुधवार को दिन के 2 बजे आपके लिए हम प्रसारित करते हैं। आज इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगे,
1: मैं हूं किरण, सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हर फरमाइश के पीछे एक कहानी होती है, किसी की याद किसी की निशानी होती है, गाने तो सिर्फ बहाना होता है, दिल की बात जुबानी होती है।
0: सजेगी महफिल जब साथ आप सबका होगा, हर नगमा आज बस आपके ही नाम का होगा। यूं ही नहीं कहते हम आपको अपनी जिंदगी, आपकी एक फरमाइश से ही तो हमारा दिन तमाम होगा। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश के साथ। सच कहूं तो आप श्रोताओं की ये फरमाइशें हमारे लिए महज गाने सुनाने की गुजारिश नहीं है, बल्कि हमारे लिए लाइफलाइन है। जब आपके टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज और आपकी पसंद हम तक पहुंचती है तो यकीन मानिए हमारे काम करने का जज्बा दुगना हो जाता है। हमें बेपनाह खुशी होती है जब हम आपकी भेजी हुई फरमाइशों को पूरा करते हैं और उन गानों के जरिए आपकी भावनाओं को इस मंच से जोड़ते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के फरमाइशी गीतों का सिलसिला और देखते हैं कि आज पिटारे में पहला गाना किसकी पसंद का है। जी हाँ दोस्तों, आज पहली पसंद हम आपको जो सुनाने वाले हैं वो एक भक्ति गीत भी है, मोटिवेशनल सॉन्ग भी है और इसकी फरमाइश हमारे पास आई है जम्मू से और भेजने वाली श्रोता है नीरजा बख्शी। उनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है तानिया, तन्वी और जयपाल। ये सुनना चाहते हैं ये गीत जिसके बोल है मंदिर की सीढ़ी चढ़ चढ़ के। आइए सुनते हैं इन सभी का ये पसंदीदा गीत।

लेते हैं कार्यक्रम की अगली फरमाइश जो आई है पूजा विहार अंबाला कैंट से। सुनने वाले श्रोता है प्रेमचंद राजपूत, सुमेश कुमार, अमित कुमार, बिल्ला वानी, कृष्णा ठाकुर, सभी महिलाएं और जैन परिवार, ये सब सुनना चाहते हैं फिल्म बगावत का गाना जिसके बोल है मेरे महबूब तुझे सलाम। इस गाने को आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले। लीजिए पेश है इन सब का पसंदीदा नगमा।

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले श्रोता हैं सईद मसरूर। ये सुनना चाहते हैं फिल्म जवार बाटा का गीत। गीत के बोल है तुरुरुरु तुरुरुरु। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार ने। सईद मसरूर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब हसन। प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

0: खुशी हो जा यार शुरू तुरु रुरु तुरु रुरु तेरा मेरा प्यार शुरू तुरु रुरु तुरु रुरु तेरा मेरा प्यार शुरू।
1: अगली फरमाइश आई है फिल्म लावारिस के गीत की, जिसके बोल है काहे पैसे पे इतना गुरूर करो। इस गाने को आवाज दी है किशोर कुमार ने और ये फरमाइश आई है पिंड तेजा मोड़ी अम्बाला से और भेजने वाले श्रोता है बंसीलाल संधू। उनके साथ ये गीत सुनना चाहते हैं कबीर संधू, जसबीर संधू, वरनीत कौर संधू और पवनीत कौर संधू और सारा संधू परिवार। नीचे पेश है इन सब का पसंदीदा गीत।
2: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव जगुड़ी जिला यमुनानगर से भेजने वाले श्रोता है रणधीर बांगड़। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, विदेन, कीरत और मनराज। ये सुनना चाहते हैं फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम से गीत। गीत के बोल है कभी बंधन छुड़ा लिया। इस गीत को आवाज दी है सोनू निगम और स्वप्न अवस्थी ने। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

निजी बीच है फिल्म शीरिन फरहाद का गाना जिसके बोल है गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। इस गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और ये फरमाइश हमारे पास आई है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। लीजिए पेश है इन सभी श्रोताओं का पसंदीदा गीत।

अगला फरमाइशी गीत है कागज के फूल फिल्म से, जिसे आवाज दी है गीता दत्त ने और गाने के बोल है वक्त ने किया है क्या हसीन सितम। ये फरमाइश हमारे पास आई है मंडी हिमाचल प्रदेश से, भेजने वाली श्रोता है सिमरन और उनकी तरफ से पहली बार ये फरमाइश आई है और उम्मीद है कि आप आगे से भी अपनी फरमाइश भेजते रहेंगे। लीजिए पेश है इनका पसंदीदा गीत।

0: वक्त ने किया।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, और जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज का फरमाइशी गीतों का सफर यहीं पर खत्म होता है। अगर आप भी इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजना चाहते हैं तो आप हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी फरमाइश भेजें अपने नाम और जगह के साथ, और जो श्रोता आपके साथ उस फरमाइश को सुनना चाहते हैं आप उनके नाम भी लिखें और मैसेज करें हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। और आखिर में हम आपको टीम रेडियो वितस्ता की ओर से एक गीत सुनाते हैं, और आज हमने आपके लिए चुना है एक कश्मीरी गीत। गीत के बोल है कत्यू छुक नंद बाने वलो माँ शोक म्याने, और ये गीत हम डेडिकेट करते हैं अपनी माँ को जो हमेशा ये गीत गुनगुनाती रहती थी। आप सभी को हम इस कश्मीरी गीत के साथ छोड़े चले जा रहे हैं और आप हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी फरमाइशें हमें भेजते रहेंगे। अगले हफ्ते शुक्रवार को दिन के 2 बजे आपसे फिर भेंट करेंगे। हमें दीजिए इजाजत।
2: चलते चलते फरमाइश का सिलसिला यूं ही चलता रहे, गाने के साथ दिल भी धड़कता रहे। आप सुनते रहे, हम सुनाते रहेंगे, ये सुरों का रिश्ता यूं ही बना रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, और मैं इंतजार करूंगा आपकी फरमाइशों का। और आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, उन्नत रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
3: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: मैं गोरी घड़ी

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
3: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 5, पेश करेंगे आरजे किरनी। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है यादें। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।
6: सभी सुनने वालों को मेरा यानी किरनी का नमस्कार। आपका स्वागत है एक शानदार संगीत यात्रा में। इस शो में हम लेकर आ रहे हैं आपके दिलों को छू लेने वाले रेट्रो हिट्स, जिनकी दुनिया हमेशा ताजगी का एहसास कराती है। और आज का हमारा टॉपिक है यादें। यादें भी अजीब होती है, दिल को बहलाती है, कभी हंसा देती है, कभी रुला जाती है।

बिछड़ कर भी जो पास रह जाती है वो यादें ही तो है जो कभी नहीं जाती है। यादों का असर कुछ ऐसा है जैसे बरसात की पहली बूंद का नशा है।

इसके साथ ही आज के रेट्रो हिट्स प्रोग्राम का समय समाप्त हो रहा है। अब बारी है अलविदा लेने की, लेकिन याद रखिए, रेट्रो हिट्स का सफर कभी खत्म नहीं होता। हम जल्दी ही फिर से मिलेंगे पुराने गानों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 5। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था यादें। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का था। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

थी सिर्फ पानी पी खींची लकीरें, इंद्रधनुष की धूप रेतीली आशियानी, वहमो गुमा की बुनियाद पे खड़े, उम्र के इस पड़ाव पे तुम्हारे लौटने की उम्मीद सी जगी है।

जब दूरानी सफर पीले पत्तों के मौसम में तुम्हारी मासूम मुस्कान भरी अदाएं शामिल हों। ए रुको मत जाओ, यूं ही हमें छोड़कर बेवजह कभी कभी साथ तो चले इन काली घटाओं के हमराह, अपनी नींदों के बादल शायद भीग जाएं।

सर्द बर्फीली हवाओं का एहसास। खामोश वादी में माजी कुछ कहना चाहता है, मुझको मुझे से अलग करना चाहता है। रूह की फरियाद यहां सुने कौन, क्या बीते पल लौट आएंगे, क्या समय की इन तेज धाराओं से हमें भी गुजरना होगा। साथ चलने का वादा निभा न सके, पास रहने की हसरत लिए बैठे हैं।

जाने ये कौन मेरी रूह को छू कर गुजरा, हमेशा मेरे साथ रहते भी कभी मेरे पास न रह सके। जाने ये कौन इन गुप अंधेरों में अपनी नर्म नाजुक मुलायम उंगलियों से मेरे बालों को सहलाते गए। देर रात तक मुझे अपने आंचल में छिपाते गए। माजी की यादें सुनाकर रुलाते गए। कटा कटा सा जीवन धुंधले ख्वाबों के आगोश में तुम्हें तलाशने की नाकाम कोशिश, पर ये ख्वाब बनते हैं शायद टूटने के लिए, हां सिर्फ टूटने के लिए।

मैं कहीं युगों से बैठा हूं, चांद से कोई उतरा नहीं। तुमने जो कहा था आऊंगी, तुम्हारे चौखट से गुजरूंगी, रखूंगी कदम दहलीज पर, तुम्हें आवाज दूंगी, बुलाऊंगी और ले जाऊंगी अपने साथ दूर दूर बादलों के उस पार, जहां मौजूद हैं हमारी बस्तियां, हैं वहां हमारे अपने तुम्हारे ही तरह। पर बैठा हूं कई युगों से इंतजार में, लेकिन लेकिन चांद से कोई उत्तर।

बरसती बादल, झूमती हवाएं, भीगती मुस्कान, ये खूबसूरत सुबह जीवन संघर्ष की डगर पर गामजन, उम्मीदों का लिबास पहने हुए हसरते ही किसी का साथी ना छूटे। कोई किसी की जज्बात से ना खेले, एहसास मोहब्बतों का यूं ही बर

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाओं में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।

विदस्तार 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

जी आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। आज किसी कारणवश हम आपके साथ 1 घंटा ज्यादा रहे। अब समय है आपसे इजाजत लेने का। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और घर परिवार का ध्यान रखें। बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दें और बने रहिए एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता के साथ हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।